0: The latest at midday. State Highway 1 at Hunterville has reopened following a serious crash just before 9:30 this morning. A helicopter was called to airlift three people to hospital after the single vehicle crashed north of Main Street. And the Met Service has issued a severe thunderstorm warning for Wellington, with storms expected to bring torrential rain. NZTA says this will increase the chance of flash flooding, which could impact state highways and local roads. Social service organisations are launching a new initiative to promote collaboration in the care system. They want to put the recommendations of the inquiry into abuse and care into action. Belinda Himiona of Social Service Providers Aotearoa.
1: Our collaboration is about coming together for collective effort to improve frontline practice by providing a one point of connection where they can also talk about how we can improve care going forwards.
0: This morning's earthquake in the central North Island is now being recorded as magnitude 5.9. The quake struck just before 5 a.m. and has been felt as far north as South Auckland and as far south as Ōtaki. It was centred 5 kilometres southwest of Tamaranui at a depth of 9 kilometres. There have been no reports of any major damage so far. New Zealand has won two medals at the Glasgow Commonwealth Games. Lewis Clairbert finished second in the 200 metres medley after Erica Fairweather had taken silver in the 400 freestyle on Sky Sport.
2: The silver medal at the moment is Fairweather, but the gold medal is going to go to Australia's Lani Pallister, her first 400 metres freestyle title of the Commonwealth Games. The silver to Fairweather of New Zealand.
0: And NBA superstar LeBron James has announced he'll play with the Philadelphia 76ers next season.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
5: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि शेरो संजीश शीमल कुमार के पिताजी सुशीला वती कुमार के पति भूतपूर्व सबेतु नांदी निवासी वैली कंक्रीट लॉयर्स के सतेंद्र कुमार उर्फ पाड़ू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। श्रद्धांजलि के लिए आप कल शाम 6 से 7 बजे के बीच में जा सकते हैं एंड अंतिम संस्कार जो है वो सोमवार 3:30 बजे एंड्स फ्यूनरल होम ऑन साइट क्रिमेशन 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 13 सेक्रेटेरिएट प्लेस रैंडविक पार्क जा सकते हैं अथवा 0210-244-5080 पर संपर्क कर सकते हैं। सत्येंद्र कुमार उर्फ बाड़ू की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। श्रद्धांजलि के लिए आप 13 सेक्रेटेरिएट प्लेस रैडविक पार्क जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0210-244-5080 के बीच में कल शाम 6 से 7 बजे तक के बीच में। अंतिम संस्कार 3:30 बजे सोमवार को एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वैसारूबा के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र हेमलता बेन मूर्ति के पति मनोज कुमार और ANZ बैंक पापा टोटोई के पूनम मूर्ति के पिताजी सडा केशवान चिन्नया नायडू चंदर कांता सरोजा और धनलक्ष्मी के भाई कृष्ण मूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-827-0312 पर संपर्क कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-827-0312 पर संपर्क कर सकते हैं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि रवि बा के स्वर्गीय अर्मोगाम रेड्डी की पुत्री शिमला लौतोका के स्वर्गीय यंकतेश परमल अर्जुन सामी की पत्नी पापा टोईटोई के अरविंद सामी की मां शेख मनोहर सामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार परसों सुबह 11 बजे सोमवार सुबह 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशन 11 बोल्डरवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-437-3348 पर संपर्क कर सकते हैं। पापा टोईटोई के अरविंद सामी की मां शेख मनोहर सामी की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार सोमवार 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशन 11 बोल्डरवुड प्लेस वेरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-437-3348 पर संपर्क कर सकते हैं। वैसारू बाग के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र साडा पिल्ले केशवान चिन्नैया और चंद्रकांता के भाई मनोज कुमार और ANZ के पूनम सिंह के पिता सेगा रियाल्टी के कृष्ण मृत्यु की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार 26 जुलाई को यानी कल दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम ऑन साइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। सेगा रियाल्टी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा।
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परदेस, रोमांस। एंड क्या वाइब है यार, एक टाइम था जब एक्टर्स जब आते थे ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप प्यार को भूल भी गए हो ना, तो प्यार विल रिविजिट योर लाइफ, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, नॉट ऑलवेज, कि हमेशा आप यू नो व्हाट आई मीन, बट हाँ मतलब एक ऑरा था यार जब शाहरुख खान स्क्रीन पे आया करते थे। एंड दिस मूवी इज़ लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज़ बिकॉज आई हैव लव्ड महिमा जो है इस मूवी में। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, लड़की की शादी होती है, बाहर जाती है, सेटल नहीं हो पाती, वहाँ किसी और से प्यार हो जाता है, एंड देन हाई स्टेटस लो स्टेटस, ऑल ऑफ दोज, अ लॉट ऑफ क्रिंज थिंग्स एज वेल, बट ऑन टॉप क्या एक्टिंग है, क्या गाने हैं, क्या वाइब है। और वो भी जब उस गाड़ी में बैठ के डेजर्ट में जब एकदम हाई स्पीड में इंसान चला रहा होता है कार, आई थिंक देयर आर सम मूवीज जिन्होंने हमें कुछ ऐसी क्या बोलते हैं यार, मेमोरीज दी हैं कि वी वॉन्ट टू रीविजिट ऑल ऑफ देम। सो जैसे इसमें एक गाना है परदेस मूवी में, दिल दीवाना, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेक वीडियोज़ अराउंड इट। जब जाते हैं वो US में लंबी ड्राइव पे जाते हैं, एंड दे मेक वीडियोज़, फॉर एग्जाम्पल ना तुम जानो ना हम, यहाँ न्यूजीलैंड में लोग काफ़ी सारे बनाते हैं, देन ज़रा ज़रा गाना जो क्राइस्टचर्च में शॉट हुआ है उसके ऊपर लोग बनाते हैं। तो देर आर सम मूवीज़ लाइक देर आर आइकॉनिक, द स्टार्स आर आइकॉनिक एंड दे लीव अ बिग मार्क फॉर अस। बट येस, इट वॉज़ अ वेरी रोमांटिक ट्रैक, और बिल्कुल हमारा आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी रोमांटिक हो रहा है। मैं चार जो सीज़न है वो ऑलरेडी देख चुकी हूँ सुबह से, एंड आई एम ऑलरेडी बकल्ड अप बिकॉज द वीकेंड ओवरऑल लुक्स क्वाइट विंडी एंड रेनी। तो मैं थोड़ी देर में आपके लिए वेदर अपडेट लेकर आऊँगी, बट फिलहाल जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है, और कॉमनवेल्थ गेम्स की भी अपडेट्स लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, रेडियो पब आपके लिए जारी है। मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 104.2 FM, और अगर आप सिटी में हैं तो 87.7 AM जो है इस पे हमारे साथ जुड़े रहना ना भूलें। और इसके अलावा, इसके अथवा जो है, आप रोवा ऐप जो है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, एंड रोवा ऐप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त। और साथ में जो रोवा ऐप है उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। वी हैव डिफरेंट म्यूज़िक प्लस स्टेशन जहाँ पर आपको 80s के गाने मिल जाएंगे, 90s के मिल जाएंगे, उससे भी पुराने 60s 70s के मिल जाएंगे, विच आई लव दैट म्यूज़िक। लेटेस्ट पंजाबी हिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, साथ में फीजी कीर्तन संग्रह है यहाँ पर, फीजी के भजन्स हैं, और सूफी म्यूज़िक भी है, जैसे राहत फ़तेह अली खान जी जो हैं वो आने वाले हैं ऑकलैंड में, और उनका भी म्यूज़िक जो है यहाँ पर आपको एक ऐप के अंदर मिल जाएगा। इट इज़ द रोवा ऐप, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट।
1: Yeah. Radio Pub.

सो बात करते हैं सबसे हॉटेस्ट मुद्दे के बारे में, जिसके लिए हम रेडियो पर भी यहाँ पर काफ़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है. आई कम फ्रॉम इंडिया. मैं न्यूजीलैंड क्या बोलूँ यार, न्यूजीलैंड इज़ द प्लेस आई लिव, न्यूजीलैंड इज़ लाइक माई फैमिली, एवरी थिंग फॉर मी राइट नाउ. बट ऑफकोर्स एक पार्ट है मेरा जो मेरी कंट्री में है, और वहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कि न्यूज़ में हाईलाइटेड है, आप और मैं जानते हैं. एंड आई ऑल्सो वॉज समवन जिसने नीट का पेपर खुद ही दिया है एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो गोइंग थ्रू दैट मेडिकल जर्नी, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है कि जब एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है, चाहे वो नीट हो, मैं AI EEE इंजीनियरिंग, जो भी एग्ज़ाम दे रहा होता है, इट्स नॉट दैट वो बच्चा जो उस चीज़ के थ्रू जा रहा होता है. जिस तरह से हमारा कल्चर है, फॉर एग्जांपल फॉर मी पर्टिकुलरली आई कैन स्पीक अप दैट जब मेरा एग्ज़ाम था, जब मैं नीट का पेपर दे रही थी और मैं ऑल इंडिया मेडिकल एंड ऑल सारे जितने एग्जामिनेशन होते हैं, तब डिफरेंट नेम्स हुआ करते थे, जब मैं दे रही थी तो मेरे पापा टाइम निकाल के मेरे साथ एग्ज़ाम्स देने के लिए सेंटर्स पर जाया करते थे, मेरी मम्मी टाइम निकाला करती थी, वो दोनों अपना स्केड्यूल देखते थे किस तरीके से मुझे लेके जाना है. देन कुछ फॉर्म्स होते थे, फॉर्म्स के फलान ढिमकान हज़ारों पेपर्स होते हैं जो आपको अटैच करने होते हैं, उसके लिए मेरे पापा मम्मी हेल्प कर रहे होते. मुझे याद है उस टाइम पे मेरे नानू मेरी हेल्प किया करते थे, मेरे मामू मेरी हेल्प किया करते थे, मेरे चाचू मेरी हेल्प किया करते थे. इट्स नॉट ओनली दैट वन पेपर, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जाता है, बिकॉज एक बच्चे का पूरा लाइफ उस पर डिपेंड करता है. एंड लुकिंग एट वॉट इज़ हैपनिंग, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल. बट इसमें मैं दो आउटलुक यहाँ पर लेकर आई हूँ. पहला तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैबिनेट ने क्लियर किया है टफर एंटी पेपर लीक बिल, जिसमें अप टू 10 ईयर्स ऑफ जेल जो है ये दी जाएगी, और साथ में 10 करोड़ का फाइन जो है ये दिया जाएगा. ये जो बिल है ये कल यानी फ्राइडे को अप्रूव हुआ, एंड दिस इज़ जस्ट टू प्रपोज टफर पेनल्टीज़. आई डोंट फील कि ये टफ है, बट येस अलॉट इज़ गोइंग ऑन, वी हैव स्पोकन अलॉट ऑन रेडियो. अगर आपका भी कुछ आप भी कनेक्ट करते हैं, अगर आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं एनी चांस, और आपका वो एक इमोशनल जो है थिंग भी है जो आप अपनी स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5599 पे. बट यार व्हाट अबाउट दिस स्पूकीनेस दैट्स गोइंग ऑन देयर, बात करेंगे इसके बारे में. आगे बढ़ते हैं इस अगले गाने के साथ, बट वापस ज़रूर आइएगा. बात करने वाली हूँ मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी.

0: Chubby Swag is on.
1: Hey, hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: MyTitan Club members, ye aapke liye. Is July, shop kijiye aur scan kijiye apna club card and you're in the draw to win 10,000 air points plus weekly air points prizes bhi. T's and C's apply. Get amongst it at MyTitan Mega Westgate or Henderson.
3: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
6: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
7: क्या बनाते हैं इन kebab को special, Chef Alex?
6: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
7: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
6: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
7: 100% authentic and pure as mother's love.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: Yeah. Big Radio Pub.

0: वेलकम बैक। देखते हैं हमारे पॉडकास्ट सेक्शन में क्या नया लेकर आए हैं हमारे ड्राइव शो के होस्ट सैंडे और रुजबे। सो इस बार हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हैं शनील लाल, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स। शनील जो हैं, इन्होंने बातें करी है LGBTQ कम्युनिटी राइट्स के बारे में, रेसिज्म के बारे में, रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च फॉर इक्वालिटी। दिस इज़ समथिंग जो है आई थिंक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कमिंग फ्रॉम शनील, आई फील कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू फीड अस विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो मेक अस अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रगल्स हैं, आप कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव बीन थ्रू दिस पॉडकास्ट माई सेल्फ एंड आई फील दैट बहुत इंसाइटफुल था मेरे लिए एंड आई थिंक कि आपके लिए भी ज़रूर होगा। तो टाइप करें ड्राइव और इसे भेज दें 5599 पर।
1: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा लाता रे।
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
3: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20-40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
5: Dash!
6: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
7: पेट्रोल पंप देखते ही टेंशन हो जाती है। अब टाइम है उसके पास से मुस्कुराते हुए निकलने का। टाटा नैनो ऑटो ग्रुप ईवी और हाइब्रिड सुपरसाइट में ब्रांड न्यू ईवीज और हाइब्रिड्स सिर्फ 29,990 से 7 साल की वारंटी के साथ। अवार्ड विनिंग लीप मोटर, बाइक एसयूवीज एंड द फेमस डोंगफेंग रेंज। ट्रेड-इन्स वेलकम। फाइनेंस भी अवेलेबल है। फ्यूल पर पैसे बचाइए। ग्रेट सिलेक्शन ऑफ न्यू एंड यूज्ड व्हीकल्स। विजिट टाटा नैनो ऑटो ग्रुप, 170 ग्रेट साउथ रोड, टाटा नैनो। फीस, सीज, डीज एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: Radio Pub.
1: स्वागत है आपका, वेलकम बैक. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे, मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. रेडियो पब आपके लिए जारी है. थोड़ी देर में मौसम की जानकारी मैं लेकर आऊंगी आपके लिए. स्टे ट्यून्ड.

मुझे लग रहा है आज महिमा चौधरी डे है, बिकॉज इन दिस सॉन्ग ऑल्सो महिमा चौधरी इज देयर एंड शी इज लुकिंग सो सो सो ब्यूटिफुल. मैं हूँ रक्षा, आपके लिए लेकर आई हूँ रेडियो पब. देखते हैं मौसम जो है हमारा कैसा रहने वाला है इस वीकेंड. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉच जो कि आज शाम को 7 बजे तक ऑकलैंड में है, एंड हैवी रेन्स जो है ये पॉसिबल है, ऑलरेडी चल रहा है. आफ्टरनून में काफ़ी विंडी रहने वाला है, एंड टूवर्ड्स द इवनिंग अगेन जो है वो ड्रिजलिंग एंड रेन विल स्टार्ट. मैक्सिमम टेम्परेचर 14, मिनिमम 8. नाउ गोइंग टिल टू टुमारो, वन थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि टेम्परेचर जो है इसमें ह्यूज ड्रॉप आने वाला है, द मिनिमम टेम्परेचर जो कि 3 डिग्री और 2 डिग्री तक जाने वाला है फॉर द कमिंग वीक. सो बी प्रिपेयर्ड. ये मत सोचिए कि अभी थोड़ा बीच में 1-2 दिन सेटल था, थोड़ी गर्मी थी तो बस अब हो गया, विंटर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं. अभी आगे काफ़ी ठंडा है. अपना ध्यान रखिए, अपनों को और भी ज़्यादा ध्यान रखिए जैसा कि मैं कहती हूँ. कल यानी संडे को भी मौसम जो है ये मिला जुला रहने वाला है. देयर विल बी विंड एंड ऑल्सो बारिश जो है ये आपको देखने को मिलेगी. थोड़ा सा क्लियर होगा इन टूवर्ड्स द आफ्टरनून, बट देन लुक्स लाइक अ वेरी विंडी एंड रेनी वीकेंड फॉर us in Auckland. Iske alawa going into the week looks like a very sunny day, Monday, Tuesday, Wednesday, and then of course towards the end, jaisa ki hamesha hota hai yaar jab chutti aane wali hoti hai barish shuru ho jati hai, but should not always complain. Bahut acche weekends bhi abhi humne past mein dekhe hain, very sunny weekends. So Monday, Tuesday, Wednesday looks like very sunny, but yes, it is going to be very क्या बोलते हैं, बहुत ठंड जो होने वाली है. ऑकलैंड एंड ग्रेट बैरियर आइलैंड के लिए वी हैव स्ट्रॉन्ग विंड वॉच 8 बजे से 7 बजे तक. बट यार आपको अर्थ को एक फील हुआ क्या कल रात को सोते वक्त? हुआ है तो यार मुझे ज़रूर बताएं 5599 पर.

Radio Pub. So back to the Jantar Mantar protest, aur wahan par main aise random scroll kar rahi thi and I was reading a news jahan pe maine dekha ki एक ही बार नहीं मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा कि वहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट नीट से कोई लेना देना नहीं है एंड आई सॉ अ फ्यू बॉयज़ जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल थे और जब उनको इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बोला कि आई गिव यू मैं आपको दो स्टोरीज बताती हूँ. एक में लड़के ने बोला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये जो चीज़ है ये आगे बढ़े और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो उदास हो जाए फिर मैं उससे शादी कैसे करूँगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगी. So like pro max spooky behavior. What अब मैं इसमें क्या बोलूँ. इसके अलावा on the other side there was this other guy जिसकी कोई girlfriend नहीं है, जिसका भी lead से कोई लेना देना नहीं है, just to you know secure his future wife or girlfriend. वो उधर आया था कि भाई मैं करूँगा because this is wrong first of course and then कि अगर मैं कल को किसी लड़की से शादी करता हूँ या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है या जो ट्रॉमा है इसके थ्रू अगर वो जा रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ऐसे ट्रॉमे के थ्रू हो जाए. सो भाई आई मीन जेन ज़ी एकदम अलग क्या बोलते हैं, एक अलग डायमेंशन मुझे देखने को मिला एंड लाइक प्रो मैक्स स्पूकी बिहेवियर एंड साथ में भाई क्या है, मतलब आई जस्ट लव्ड इट. आपका क्या कहना है?

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and

0: Miss Giant Deals on at Noel Leeming.
1: It's back to school at Woolworths. Get Mother Earth Baked Oaty Slice Bars 6-pack, just $3.59 each. Or Fresh and Fruity Regular Yogurt 6-pack, just $3.99 each. Back to school at Woolworths. TCs and exclusions apply.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ। अच्छा,
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स। सेलेक्टेड नए ओमोडा और

0: credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Yo.
1: Radio Pub.
4: So the final day is here. Aur final mein koi sports event ki main baat nahi kar rahi hoon. Final जंतर मंतर का भी मैं फाइनल कंक्लूजन वाले इवेंट या डे की बात नहीं कर रही हूँ. व्हाट एल्स कैन इट बी, नथिंग. फाइनल जो है ये डे है, बेसिकली आज शनिवार है और आज यहाँ पर एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर एंड आई वुड से समवन हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ कवाली इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन राहत फ़तेह अली खान, जो कि आज शाम को परफॉर्म करने वाले हैं एट दी ट्रस्ट एरिना एंड ओनली अ फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट. सो इट्स वन लेजेंड एंड वन नाइट. अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, अगर आप चाहें तो टिकट्स जो हैं ये जाकर क्विकली चेक कर सकते हैं dryTickets.com पर. एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय जेके स्टार्स प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन. इनका एक इवेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ. आई सॉ समवन पोस्टिंग फ्रॉम आई थिंक एडिलेड एंड इट वाज अमेजिंग. आई मीन देयर वर लॉट ऑफ स्निपेट्स इन स्टोरीज वेयर ही वाज सिंगिंग. बाय ओरिजिनल क्या और रिकॉर्डेड क्या, आई मीन लेजेंड लेजेंड होता है. एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस टू नाइट. अगर आपने टिकट्स नहीं खरीदी है, लास्ट टाइम जाके चेकआउट कर सकते हैं dryTickets.com पर.

0: Yo.
1: Radio Pub. वेलकम बैक. रेडियो पब आपके लिए जारी है. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है एंड मेटल नहीं मेटल कह रही हो भाई मेटल तो मेडल तो मेटल का बना ही है लेकिन मेडल्स जो है हैंडफुल ऑफ मेडल्स जिसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड. इट हैज़ इसका अब इसकी शुरुआत हो चुकी है. कौन सा स्पोर्ट है ये क्या मेडल मिला ये सारे डिटेल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस घंटे. सो स्टे ट्यून्ड.

सो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर न्यूजीलैंड, जहां पर एरिका फेयर वेदर जो है इन्होंने पहला मेडल जीता इन द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड. ये सिल्वर मेडल जीते इन विमेंस 400 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल इन ग्लासगो आज सुबह, विच इज़ न्यूजीलैंड टाइमिंग. फेलो कीवी लुइस जो हैं ये इन्होंने बैक किया, और इन्होंने भी एक एक्सेलेंट सिल्वर इन द मेंस 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली जीता. सो ऑलरेडी जो हमारे स्विमर्स हैं दे आर शाइनिंग इन द चार्ट्स. इसके अलावा भी क्या चल रहा है कॉमनवेल्थ में, ये मैं आपके लिए लेकर आऊँगी थोड़ी ही देर में. कीप हमिंग.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: It's the final days of Big Save's massive stock liquidation sale. We're overloaded with stock. Our warehouses are full. Our stores are packed. So today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99. Queen beds from $8.99. Plus get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Everything must go. Only at Big Save.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: Moisture और ventilation का problem लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
6: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
7: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
9: Now I'm here.
8: Back here now.
9: Here I am.
8: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
10: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.

0: Yo.
1: Radio Pop.
2: So 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इनकी शुरुआत हो चुकी है. सो लेट्स लुक इन टू द मेडल्स टैली. ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया इज टॉपिंग द चार्ट्स विथ टोटल ऑफ 13 मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज है. इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है ये 7वें नंबर पे है. वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 सिल्वर इन द स्विम सेक्शन, तो 2 मिले हैं न्यूजीलैंड को. अगर हम देखें तो इंडिया को 1 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, 2 10वें नंबर पे है इंडिया. एंड इसके अलावा नाइजीरिया बहुत अच्छा कर रही है, 6 मेडल इनको भी मिले हैं, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर. इंग्लैंड जो है 1 गोल्ड, 4 सिल्वर के साथ 4थे स्थान पे. साथ में कनाडा 5वें और साउथ अफ्रीका जो है ये 6ठे स्थान पर है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के. इसके सारे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स आपके लिए हम बराबर लेकर आते रहेंगे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

भाई जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक नया एंगल देखने को मिला है, जहां पर हमारे जो मोदी जी हैं इन्होंने वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, और इस वीडियो पे इन्होंने जो है हाय फ्रेंड्स बोलकर वीडियो बनाया है। पहली वीडियो आई, दूसरी वीडियो थैंक करके आई, और इस पे जो जेंजी हैं इन्होंने, इनका एक मीम आ रहा है कि दे आर रेडी टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट ओनली इफ़, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ तब जब मोदी जी जो है वो अपना स्किन केयर रेजीम बताएंगे, बिकॉज वीडियो में बहुत ज़्यादा चमकते हुए नज़र आ रहे हैं मोदी जी। तो भाई उनका स्किन केयर रेजीम जो है वो अभी दुनिया जो है यहाँ पर जानना चाहती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं वैसे?

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

तो अभी हम स्किन केयर रेजीम के बारे में बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, बट अभी इसके ऊपर और भी अलग अलग रील्स आने लगे हैं जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे हराओगे, एक रील ने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इंस्टाग्राम के ये तोड़ दिए हैं। अब ऑफकोर्स अभी रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही, बिकॉज पहली बार रील बना के आए हैं। जनता जानना चाहती है कि रील में कुछ सोल्यूशन और कंक्लूजन है या सिर्फ यू नो प्रेजेंस दिखाया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ 5599।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
3: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Hum.
8: Yo.
5: Big Radio Pub.
9: वेलकम बैक हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 104.2 एफएम 87.7 एएम अगर आप सिटी में हैं तो और साथ में रोवा ऐप इन तीनों के माध्यम से आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं रेडियो पब में आज के शो में हमने कॉमनवेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें करी क्या चल रहा है देश दुनिया में हमारे पॉडकास्ट सेक्शन में क्या है एंड ऑफकोर्स द बिग मुद्दा गोइंग ऑन इन इंडिया इसके अराउंड क्या चल रहा है थोड़ी टेंशन वाली बातें थोड़ी चिलैक्स वाली बातें थोड़ी मीम्स में क्या चल रही है ये भी हमने कर ली साथ में कॉमनवेल्थ के जो लाइव अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको लाके दे रही हूँ साथ में देर आर सम वेदर वार्निंग्स एंड वॉचेस इन प्लेस इसके अलावा मौसम कैसा रहने वाला है ये भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं तो आगे चल के आपको मैं बताने वाली हूँ कौन से ऐसे स्टार्स हैं और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इन ऑकलैंड सो स्टे ट्यून्ड

सो आपको अभी न्यूजीलैंड में बहुत सारे डांस वीडियोस दिख रहे होंगे जहां पर करण औजला का एक बहुत फेमस गाना है बॉयफ्रेंड, उसके ऊपर लोग डांस कर रहे थे बिकॉज हमारे यहाँ ऑकलैंड में एक बहुत लाजवाब डांस वर्कशॉप हुआ. अब वर्कशॉप से आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन से कोरियोग्राफर के बारे में बात कर रही हूँ. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको डांसिंग पसंद हो आप इस डांसिंग वर्कशॉप के पार्ट ज़रूर बने होंगे. देयर आर न्यूमरस स्टोरीज एंड वीडियोज़ पूरा ऑकलैंड में भरा हुआ है, लेकिन आई वॉन्ट अस टू बी फोकसिंग ऑन द सिंगर जिसने ये बहुत ही लाजवाब सा गाना बनाया और इनका नाम है

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
7: Dibba khul gaya.
8: Bharat bhai, tiffin khul gaya chhe. Sanjana ka dibba khul gaya.
9: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga. Dibba khul gaya.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. The global sensation, मेरे बहुत ही फेवरेट, आपके बहुत ही फेवरेट और ऐसे सिंगर जो कि आजकल छाए हुए हैं, बिकॉज भाई जो गाना निकालते हैं सब सुपर डुपर हिट हो जाता है और पता नहीं कितने टाइम, कितने महीनों तक उस पर लाइक कॉन्टिन्यूसली रील्स बनती जाती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन करण औजला, जो कि अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो है इसको इसके तहत ऑकलैंड में परफॉर्म करने वाले हैं एट द स्पार्क अरीना ऑन 25th of August। और इसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप टिकट जाके ख़रीद लें, जो कि आप hum.rova.nz पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, साथ में livenation.co.nz पर भी चेकआउट कर सकते हैं। बट साथ में आपके पास मौका है एक डबल पास जीतने का। करना क्या है आपको, बहुत ही आसान है। अपना सबसे फेवरेट करण औजला जी का जो सॉन्ग है वो आपको हमें मैसेज करना है और इसमें कीवर्ड आप ज़रूर डाल देना KNA, और ऐसा करके आप 5599 पे भेज दें और उसके बाद आप एक ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जिसमें आपके पास मौका है एक डबल पास जीतने का।

सो सोशल मीडिया पे अभी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग मल्टीपल वीडियोस हैं, मीम्स हैं, टिकटॉक हैं, क्या बोलते हैं, दिस अ लॉट अराउंड. और इसके बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी और मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ. अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये दिल्ली से निकल के इंडिया के वेरियस पार्ट, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रोटेस्ट हुआ अभी रिसेंटली, लेकिन वो प्रोटेस्ट कॉपीड प्रोसेस था, बट इट वॉज फॉर समथिंग एल्स. लेट्स गो बैक टू द प्रोटेस्ट विच इज़ हैपनिंग इन दिल्ली. दिल्ली के बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो बिहार में किया गया, पटना में, जहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली का प्रोटेस्ट देख चुके थे तो उनको याद था दिल्ली के प्रोटेस्ट में क्या हुआ. अभी वो सेम चीज़ की मांग बिहार पुलिस से कर रहे हैं. वो वहाँ पर पूछ रहे हैं जाके, भाई क्या टीयर गैस की व्यवस्था नहीं की गई है? सो दीज आर द क्वेश्चंस की पुलिस से पूछी जा रही है. पुलिस इतना डर गई है, लोग हर चीज़ को, जब वो क्या बोलते हैं, पानी फेंक रहे हैं लोग के ऊपर तो लोग उसमें डांस करने लग रहे हैं. दे हैव ऑल्सो कम अप विथ देयर ओन सॉन्ग जो कि भी अमेजिंग है. बट इस मजाक मस्ती के बीच में एक और एक क्लिप मैंने देखी जहाँ पर एक लड़का, उसने ना अपनी एक किताब निकाली एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी किताब की एक एक पेज जो है ना वो फटने पर आ चुकी थी एंड एवरी देर वॉज हर शब्द पे उसकी एक मार्किंग थी. इट वॉज़ अ थिक बुक, मतलब बहुत बड़ी मोटी सी किताब थी और उस लड़की की जो मेहनत थी वो उस किताब में क्लियरली देखने को मिल रही थी. और उसने बताया कि वो क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू अपने करियर को आगे, पाथवे को कैसे देख रहा था, जिसमें अगर उसको एक मौका दिया जाता तो वो इस दुनिया में क्या चेंज कर सकता था. सो दैट इज़ हाउ डीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर और लोग समझते नहीं हैं. एंड आई थिंक चेंज जो होता है वो होना ही है और वो चेंज आने का भी बहुत अच्छा टाइम आ चुका है एंड इट्स लाइक अभी सबके सर पे आ चुका है. बट इसके अलावा मैंने एक और क्लिप देखी जहाँ पर क्या बोलते हैं, विमेन पावर के बारे में भी बात की जा रही है, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस प्रोटेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनी है. एंड एक मेरे सामने एक फ़ोटो है जहाँ पर एक लड़की जो है उसने एक कैप पहनी हुई है, पैंट्स पहने हुए हैं, एक बहुत रेन प्रोटेक्टिंग जैकेट पहना हुआ है एंड शी हैज़ पुट हर हैंड ऑन दी पुलिस जीप और वो बिल्कुल मतलब ब्रेवली उस पुलिस जीप के सामने खड़ी है और वो रोक रही है उसको. एंड दिस फोटो इज़ सर्क्यूलेटिंग और जब मैंने इसके बारे में और जाके पढ़ा तो मैंने देखा कि भाई ये जो बंदी यहाँ पे खड़ी है कोई कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अभी नीट का एग्ज़ाम दिया हो या उससे कोई रिलेशन हो. दिस पर्सन इज़ एक्चुअली एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्टर एंड मच मोर. And the way she's standing in front, जो उनकी bravery मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, I mean, this protest is not just a protest now, it is teaching us a lot of things. आपका क्या कहना है, अपना जो thought process है, आपके दिल में जो भी है आप यहाँ पर हमारे साथ share कर सकते हैं 5599 पर.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
3: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo.
4: Yo. Big Radio Pop. So, कुछ समय पहले इलॉन मस्क जो हैं इनके ऊपर रेसिज्म के कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसके बाद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ बाहर आए जिसमें इन्होंने क्लेम किया है कि ये बिल्कुल भी जो हैं एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जो रेसिज्म को प्रोपगेट करते हैं। इनफैक्ट इनकी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से एम्प्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ जो है इसमें भी ये चीज़ बहुत सिमिलर है, बिकॉज़ इनकी जो पार्टनर है वो हाफ इंडियन है और साथ में ऑफ कोर्स इनके पार्टनर के साथ ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन। इसके अलावा वन ऑफ देयर सन्स वाज नेम्ड आफ्टर नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। तो भाई ये सब चीज़ें जो हैं इलॉन मस्क सामने लेकर आए अपने बोल्ड स्टेटमेंट में, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई देखो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, मैं इन दोनों में से किसी भी जगह पे रेसिज्म को प्रोपगेट नहीं करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपका क्या कहना है?

Radio Pub. वेलकम बैक. शाम के 4 बज चुके हैं. आप हम अलॉन्ग कर रहे हैं मेरे यानी रक्षा के साथ ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जहां पर आपके लिए जारी है रेडियो पब. देश दुनिया में क्या चल रहा है ये तो हम बात कर चुके हैं भाई, लेकिन इस घंटे हम बात करेंगे कि आपकी और मेरी स्केड्यूल में क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या खाना पीना है भाई, शाम की चाय आपकी मेरी तैयार हुई कि नहीं है, क्या प्रेफर कर रहे हैं पीना. साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स के जो लाइव अपडेट है ये भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी. स्टे ट्यून्ड.

तो क्योंकि शाम हो रही है और शाम का बहुत सारे लोग का एक रूटीन होता है, स्केड्यूल होता है कि भाई चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, इसीलिए मैं इस मुद्दे को यहाँ पर उठाना चाहती हूँ। ऐसे दुनिया में इनफ मुद्दे चल रहे हैं अभी, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी है कि भैया जब चाय वर्सेस कॉफ़ी आ जाता है तो कभी कभी ना लोग इस कन्वर्सेशन को बड़ा पर्सनली ले लेते हैं। अभी ये मुझे याद है इस लास्ट वीक अराउंड 15 लोग के बीच मैं बैठी थी जहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बीच में एक कन्वर्सेशन, एक्चुअली मैं एक मीटिंग में थी जहाँ पर चाय और कॉफ़ी वर्कशॉप में के बारे में कन्वर्सेशन कहीं से पॉपअप हो गई और लोग बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट करने लगे इस सिचुएशन के साथ। और जैसे जो कॉफ़ी वाले थे वो कॉफ़ी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे और जो चाय वाले थे वो चाय के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे और दोनों के इमोशंस इतने ज़्यादा बहने लगे थे कि एक पॉइंट आ गया था कि जब चाय और कॉफ़ी के बीच के इमोशंस लड़ने शुरू हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिसको चाय पीना है चाय पियो, जिसको कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पियो और अपने चाय और कॉफ़ी को

ओ बराबर जो है इसको एंजॉय करो, लड़ो झगड़ो मत भाई, अभी लड़ने के लिए बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, जहाँ पर सॉल्यूशंस लाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन कि चाय बेटर है या कॉफ़ी बेटर है। तो यहाँ पर मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एंड आई एम रेडी एक्चुअली विथ अ वेरी नाइस कप ऑफ टी, बिकॉज आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि चाय वाला मौसम हो रहा है। आपका क्या कहना है?

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
5: अच्छा
4: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस।

So after a very successful Garba night last weekend, we are looking forward to something which is going to happen at Mahatma Gandhi Center on the 1st of August. Yahan par something nahi, actually it's a very big thing because Garba with the sensational Raj Gadvi ji yahan par hone wala hai. Lotus Productions, Shri Event New Zealand, Vinay Mehta and Pranshi group jo hain wo aapke liye lekar aa rahe hain ye cultural celebration of the year on Saturday, Shanivar 1 August ko Mahatma Gandhi Center mein. Tickets bahut jaldi bik jate hain in events ke, to main aapko very strongly suggest karungi ki events tickets.co.nz पे जाके आप चेक कर लें, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्वप्निल शाह को 0224394736. और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास हम सुनते हुए टिकट जो पासेस हैं वो जीतने का मौका ना मिले. मौका मिलेगा आपको, थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊँगी कैसे मिल सकता है आपको मौका.

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

तो भाई गरबा जो है इस इवेंट के लिए आपके पास मौका है डबल पासेस जीतने का। आप सोच रहे होंगे कौन सा इवेंट, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि गरबा नाइट विद राज गद्वी लाइव इन ऑकलैंड होने वाला है ऑन दी 1st of August महात्मा गांधी सेंटर में। डबल पास जीत सकते हैं आप। आपको करना क्या, आपको टेक्स्ट करना है एक सेंड जिसमें आपका कीवर्ड होगा RNG फॉलोड बाई योर नेम, वो लिखना मत भूलें और उसे भेज दें 5599 पे। ऐसा करके आप एक ड्रॉ में शामिल होते हो जहां पर आपके पास मौका है ये डबल पास अपने नाम करने का। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था अपनी जनता से, एक्चुअली जनता से पूछा नहीं था, बेसिकली मैं शेयर कर रही थी कि अभी मोदी जी की वीडियो बाहर आई और उसके बाद लोग उनके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछने लगे हैं कि मोदी जी अगर अपना स्किन केयर रूटीन बता देंगे तो वो जो है जंतर मंतर पे ये जो हो रहा है ये सब छोड़ देंगे। तो भाई और लोग बहुत सारे क्वेश्चन से, मतलब ऐसा कौन सा फ्रंट कैमरा है जो इतना अच्छा फोकस कर रहा है, कौन सा है ये फ़ोन? अब भाई वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भगवान जाने कौन सा फ़ोन करते हैं, उसके ऊपर क्या एडिटिंग हुई है गॉड नोस। बट ये एक जनता जो है जेंजी जो हमारा प्रोटेस्ट जो है कर रहा है इनके ये बहुत सॉलिड कुछ क्वेश्चन हैं। स्किन केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है जेंजी कि भाई स्किन केयर बताओ, हम स्किन केयर जानना चाहते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हो इसमें? यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है जिसमें 50-50 टाइप से कि भाई 50% लोग बोल रहे हैं कि लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक और बाकी 50 लोग बोल रहे हैं स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम जानना चाहते हैं भाई कि कौन सा स्किन केयर कर रहे हैं मोदी जी। वेल इफ़ यू आस्क मी आई डेफिनेटली वॉन्ट टू नो कि कौन सा स्किन केयर है ये। मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, जनता जानना चाहती है।

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: देश दुनिया में जो भी हो रहा है इन सबके बीच में मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ. वेरी वाइजली समवन मेंशन्ड और समवन हैज सेड दैट द वेल्दीएस्ट थिंग टू हैव राइट नाउ इज पीस ऑफ माइंड. बहुत अंडररेटेड चीज़ है जिसको ये ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत अंडररेट करते हैं. मुझे लगता है कि रिलैक्स करना, टाइम 8 घंटे सो लेना, मतलब इनफ स्लीप होना, अच्छे से बैठ के, मतलब विदाउट कैलोरी डेफिसिट में, लाइक आप मेंटेनेंस कैलोरी पे खाना खाना, एंड ऑन टॉप नॉच पीस ऑफ माइंड, इन ये सब चीज़ों को हम बड़ा अंडररेट करते हैं बिकॉज हम बर्नआउट को जो है वो बहुत ज़्यादा, नॉट इन न्यूजीलैंड बट लाइक मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं. बट येस, अगर आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड है, देखो लाइफ में किसी के पीस ऑफ माइंड होता नहीं, अचीव करना पड़ता है. ये मेरा खुद का ज्ञान है जो मैं ज़बरदस्ती पेलना नहीं चाहती, बट मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा इसीलिए आप पीस ऑफ माइंड पे हो. वो आपको समहाउ अचीव करना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डू, एंड आई थिंक यहाँ पर अपने पॉडकास्ट सेशंस में भी हम बहुत बार इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. प्यारी प्यारी बातें आपके लिए हम लेकर आते हैं. बट येस, दिस इज़ ट्रू वेल्थ. एंड अगर आप इसको अचीव कर चुके हो तो आप बिल्कुल महान हो. अपने टिप्स और टैट्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: स्वागत है आपका, वेलकम बैक, अ वेरी गुड इवनिंग. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे, मैं रक्षा आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेडियो पब. और यहाँ पर बात करेंगे हम एक ऐसे इवेंट के बारे में जो थोड़ी देर में जिसकी शुरुआत होने वाली है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राहत फतेह अली खान परफॉर्मिंग लाइव इन ऑकलैंड. मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि अभी आपके लिए कोई टिकट बची है या नहीं बची है, लेकिन अगर आप घर पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि टिकट्स कहाँ से खरीदनी है एंड यू रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, प्लीज़ जाके चेक करें drytickets.com. दिस इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन एट दी ट्रस्ट एरिना आज शाम को, प्रेजेंटेड बाई JK प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स इंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस.

सो कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ फिर से रुख मारते हैं जो कि ग्लासगो में हो रहा है एंड न्यूजीलैंड हैज़ बैक्ड अप 2 सिल्वर मेडल्स और दोनों मेडल जो है ये स्विमिंग में आए हैं. एक है एरिका फेयर वेदर जो हैं ये जीत के लेकर आई हैं 400 मीटर फ्री स्टाइल में और दूसरा सिल्वर मेडल जो है लेकर आए हैं लुइस क्लेयरबर्ट 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली में. ये सब करने के बाद न्यूजीलैंड जो है ये 7वें स्थान पर है अभी इस मेडल टैली में विथ 2 मेडल्स और इसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने ऑलरेडी 6 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज अपने कब्जे में कर लिए हैं.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: Radio Pub.
1: यार my heart goes for those people जिनको इतने बड़े बड़े examinations को rewrite करना पड़ रहा है. मतलब मैं imagine नहीं कर सकती, because यार बहुत मेहनत लगती है, ये आप और मैं हम सब जानते हैं. इतने coaching classes, इतनी मेहनत, इतना competition करके हम prepare होके जाके अपना exam देकर आते हैं. हम सोचते चलो अब ये ख़त्म हो गया, we'll wait for the result, जो भी होगा अब next prepare करेंगे, या अगर admission मिल जाता है या जो हम चाहते हो मिल जाता है, well enough, well good, कुछ और किसी और चीज़ पे focus करेंगे. Because of whatever corruption is going on, उसकी वजह से यार मैं दूसरा एंगल देख रही हूँ इसको. इतना दुख के फिर से जाके एग्ज़ाम देना, यार पता है बहुत डिफरेंट होता है. आप सेम वही पर्सन हो, वही इंसान हो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लेकिन दूसरी बार में हो सकता है आप और अच्छा कर दोगे या बहुत बुरा कर दोगे. बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आप सिमिलर लेवल पे एग्ज़ाम देने जाते हो. अब मैं ये नीट वीट सबको हटा देती हूँ, मैं आपसे इन जनरल पूछ रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाय चांस आपने एक एग्ज़ाम आपको रीराइट करना पड़ा हो, ऐसा कोई मौका आपको ज़िंदगी में मिला हो? आई होप कि नहीं हुआ हो. और आपने बिल्कुल सेम मतलब वाइब में वो जाके पेपर दिया हो. मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, इट वॉज़ नॉट री राइटिंग बिकॉज ऑफ मी फेलिंग या ऐसा कुछ भी. ये हुआ था एट दैट पॉइंट बिकॉज क्या बोलते हैं, मेरे कॉलेज में देयर वाज़ सम इशू गोइंग ऑन जिसकी वजह से पोस्टपोन हुआ था एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम. तो क्या हुआ था कि हम लोग बहुत प्रिपेयर थे एंड दैट इट गॉट पोस्टपोन फॉर लाइक 3 months. तो 3 महीने के बाद वो एग्ज़ाम आया और इस 3 मंथ में हमें कोई डेट नहीं आ रही थी. तो 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक्चुअल पढ़ाई उन 3 महीनों में करी. जब अगर मैं उससे पहले वो जिस डेट पर थी उसमें मैं एग्ज़ाम देती, आई डोंट नो मैं क्या करती. दिस इज़ माई स्टोरी. आपके साथ ऐसा क्या है मुझे ज़रूर बताया 5599 पर.

डबल पास जीतने का मौका है आपके पास अगर आप गरबा नाइट एंजॉय करना चाहते हैं विद राज गद्वी परफॉर्मिंग लाइव इन ऑकलैंड. दिस इवेंट इज गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे द 1st of August एट महात्मा गांधी सेंटर. डबल पास जीतने के लिए आपको करना क्या है, आपको टाइप करना है RG फॉलोड बाई आपका नाम और इसे भेज देना है 5599 पे. इवेंट्स के टिकट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्वप्निल शाह को ऑन 022-439-4736 या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं eventstickets.co.nz पर.

कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा कौन बोला कौन

थैंक यू सो मच मेरा आज यहाँ पर साथ निभाने के लिए. मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर से कल दोबारा, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बिल्कुल टॉप नॉच ए क्लास ब्रेकफास्ट शो, बिकॉज मैं पीने वाली हूँ तब कॉफ़ी. अब कॉफ़ी और चाय की क्या बात है. अगर आपने आज मेरा शो सुना है तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे, और कल भी ये जो अपने विचार हैं इसको हम साथ में शेयर करते रहेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज़्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलॉन्ग.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on, with up to 40% off women's and men's clothing, women's lingerie and men's underwear. At least 30% off kids' clothing and super deals on beauty. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
7: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
8: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.
9: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
1: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. ये है Saturday Bollywood Buzz.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
2: Join our tribe!
1: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
2: join our tribe!
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
5: Kabhi bhi, kahi bhi. Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Party up, no, no, no, no, no.
3: This is DJ Mix.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: ओग्रिम तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary राहत फतेह अली खान live in concert along with शाहजमान अली खान Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships call Karam Hundal on 02751464777.

0: Pro Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तो क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
7: The DJ Mix, only on

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
8: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
7: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
8: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
7: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
8: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना। बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz। फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477।

0: फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना चाइल्ड केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
3: गो बनानास चाइल्ड केयर इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
2: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
3: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
4: Playing Bollywood's biggest hit.

लगी भूख लगी, भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: flight on Hum.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स. और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम. तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे.
0: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस. टीज़ एंड सीज़ अप्लाई.

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Red Beast को चाहते हो या Breeze, More, Edge, Rock या MyFM के vibes, MediaWorks के पास हर platform का magic है और outdoor advertising का भी. Buses, billboards, train stations, street furniture, digital हो या static, we've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. MediaWorks, media that works.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Thinking about renovating before spring? Don't miss Elite Bathroomwear's Midwinter Reno Week, finishing today.
5: Save store-wide across all brands, plus score clearance deals of up to 60% off mirrors, ceiling fans, basins and accessories.
4: Visit New Zealand's largest bathroom showroom at 59 Allens Road, East Tāmaki. Open today, 9 till 4.
5: Hurry, sale finishes today. Find out more at elitebathroomwear.co.nz.
4: Elite Bathroomwear, a reflection of you.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
0: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Playing Bollywood's biggest hit.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: Choice aapki hai at Winger Motors. Selected nai Omuda or Jeku models par paye.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑकलैंड. कैसे हैं आप सब? यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ. और आपका और मेरा जो सफ़रनामा है वो चलेगा अगले 6 घंटे. करेंगे हम बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.

बहुत ही खूबसूरत सा मॉर्निंग, बट साथ में ठंड जो है वो कप कप आती हुई सी है। मिनिमम टेम्परेचर आज के दिन 3 रहने वाला है, मैक्सिमम 13, और बारिश जो है ये लगी पड़ी रहेगी। तो अगर आप कुछ आउटडोर एक्टिविटी प्लान करके बैठे हो तो नॉट अ गुड डे, और साथ में अगर आपने अपने विंटर क्लोथ्स जो है उसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया है देन ऑल्सो नॉट अ गुड डे। सो बिल्कुल स्टे वार्म, स्टे कोजी एंड कीप एंजॉइंग।

गरबा नाइट विद राज गद्वी होने वाला है इन ऑकलैंड, और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. लोटस प्रोडक्शंस, श्रीव एंड न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आए हैं ऑन सैटरडे द 1st of August एट महात्मा गांधी सेंटर. टिकट्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं इन इवेंट्स के. आप स्वप्निल शाह जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0224394736, या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं events.tickets.co.nz को.

रुख मोड़ते हैं जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट की तरफ जो इंडिया में हो रहा है रिगार्डिंग द लीक ऑफ नीट पेपर. अगर आपको नहीं पता नीट क्या है, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन को नीट बोलते हैं. पेपर्स जो हैं वो लीक कर दिए गए थे जो कहीं से पता चल गए, स्टूडेंट्स को रीसेट करना पड़ा. बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये होता है, उसके अगेंस्ट लोगों ने पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया. बट दिल्ली का प्रोटेस्ट जो है वो सेंटर में है. वहाँ पर प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट की है ये है कि जेन जी जो है उन्होंने अपना हमें वो साइड दिखाया जो फियरलेस है, जो चीज़ों को का सामना करता है और बदल के रखने का भी एक जो दम होता है, एक ब्रेवरी होती है वो होती है. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैरिजन इन बिटवीन मिलेनियल एंड जेंजी विच इज़ गोइंग ऑन इन दिस, जहाँ पर मिलेनियल्स जाके जब जेंजी को थैंक्स बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग वो कर रहे हो जो शायद हम नहीं कर पाए थे, तो उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप उनके जाके देखोगे तो जो मिलेनियल्स हैं वो उधर उनको पता नहीं कहाँ से टच हो गया है कि ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया. नॉल ऑफ दो सिंग, इट्स नॉट अबाउट दैट. अगर I'm also a millennial and me being a millennial, if I feel that Gen Z is doing something good, which maybe we could have also done aur hum nahi kar paaye apne time pe, to jaake unki padhai kar di aur wo acha kar rahe hain, to isme kya bura yaar. This is not this versus that, it is us against what is going wrong. To ye jo हमारा मुद्दा है ये बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी जब इतने जो है प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं. बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रखा है. प्रोटेस्ट में से दुनिया भर के मीम और कॉमेडी और पता नहीं व्हाट नॉट निकल के आ रहा है, उसके बारे में भी बातें करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। अ वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग, अगर आप जग चुके हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम है रक्षा, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज संडे ब्रेकफास्ट शो ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल जो कि भाई अपना स्केड्यूल किसी मौसम की वजह से नहीं बदलते हैं। जैसे दुनिया रंग बदलती है लेकिन स्केड्यूल नहीं बदलते और डिसिप्लिन रहते हैं, भाई कैसे करते हैं आप, हमें भी ज़रा टिप्स दें 555-99 पर।

भाई एक लड़की जिसने पहन रखी है एक शर्ट पैंट एक कैप लगा रखी है और उसके ऊपर से एक हुडी जैकेट पहनकर शी इज ट्राइंग टू स्टॉप द पुलिस व्हीकल, वो भी पूरे पोज में, बिकॉज ये जो लड़की है ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक मॉडल भी है, ये एक क्या बोलते एंटरप्रेन्योर भी है. शी इज समवन, आई मीन शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ एंड शी इज हियर टू सपोर्ट द प्रोटेस्ट. अभी ये जो फोटो है, किस फोटो में ये लड़की, इसका हाथ जो है ये वैन के के ऊपर है एंड शी इज बेसिकली ट्राइंग टू स्टॉप द वैन अलोन. सो दिस इज टेकिंग लाइक लोग पागल हो गए हैं सोशल मीडिया पे इसको देखकर कि भाई इतनी शक्ति लड़कियों के अंदर. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर एंगल ऑफ द प्रोटेस्ट. बहुत सारी लड़कियों ने इस प्रोटेस्ट में जो है इसको ज्वाइन किया है. दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर पटना से लेकर हर जगह लड़कियों ने जो है आकर किया है. बिकॉज दिस ऑल्सो वन मोर थिंग आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट कि नीट का जो पेपर है वो ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम जो है ये लड़कियां बहुत हाई नंबर पे देती है. अब क्या एग्जैक्ट रेशियो मुझे नहीं पता है, हो सकता है लड़के ज़्यादा देते हो या लड़कियां, जैसे इंजीनियरिंग में लड़के ज़्यादा होते हैं लड़कियां कम, ये चलता आया बहुत टाइम से, अब बहुत सारी लड़कियां भी देती हैं. सो आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट एग्जैक्टली एंड बी लाइक कि ये है ये है, बट येस लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नीट एग्जाम्स देती हैं एंड दे आर ऑल्सो देयर ऑन द रोड बिकॉज बहुत ख़राब हुआ है जो भी हुआ है. बट लुकिंग एट दिस क्या बोलते हैं, लुकिंग एट दिस जनरेशन ऑफ वुमेन, आई मीन किसके साथ मेस कर लिया इन लोगों ने.

0: Breakfast on Hum.
1: वेलकम बैक ब्रेकफास्ट शो में आपका स्वागत है 104.2 FM और साथ में 87.7 AM पर भी आप हमें सुन सकते हैं अगर आप सिटी में हो और रोवा ऐप जो है इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं 24/7 बिकॉज दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम। तो मैं ऐसे ही देख रही थी कुछ ब्रेकफास्ट नया टाइप का कुछ खाने के लिए बनवाने के लिए मंगाने के लिए, तो मैंने देखा आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग ब्रेकफास्ट चल रहा है जिसमें आलू और अंडा जो है इसको साथ में बनाया जा रहा है। तो बेसिकली थिन स्लाइसेस ऑफ आलू को पहले पैन पर डालते हैं, फिर उसके ऊपर अंडा डाल के ऑमलेट टाइप का बनाया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही वियर्ड कॉम्बो है बिकॉज मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखने में बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है मुझे। आपका क्या कहना है, क्या आपने इस कॉम्बिनेशन को ट्राई किया? अगर ट्राई किया है तो बताएं हमें कि हमें वी शुड गो फॉर इट और नॉट, बिकॉज सुबह सुबह मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती। तो आपकी जो मदद है यहाँ पर, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमें ज़रूर बताएं 5599 पर।

कहते हैं वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है जो अपने अराउंड के सर्कमस्टेंसेस को अपनी तरफ मोड़ लेता है, वो ऐसा कर देता है कुछ कि हर चीज़ उसके फेवर में आ जाती है। अब इसको मैं एक छोटी सी बात के साथ यहाँ पर टैग करना चाहती हूँ कि अभी इंडिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें दिल्ली जंतर मंतर के सामने के प्रोटेस्ट के बारे में आप और मैं जानते हैं, बट अभी ये प्रोटेस्ट जो है पूरे इंडिया में फैलने लगा है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पटना में भी स्टूडेंट्स ने दबा के प्रोटेस्ट किया और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि भैया जब पहले तो जाके पुलिस को खुद पूछा कि कुछ जो चीज़ें दिल्ली में थी, आई मीन दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कैनन्स, वाटर कैनन्स, और जाके खुद ही पुलिस को पूछ रहे हैं, और जब पुलिस चला रही है, जब पानी यूज़ कर रही है इनको भगाने के लिए, तो ये उसमें रेन डांस कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ इनको रोक नहीं पा रही है, हर चीज़ में ये उस क्या बोलते हैं उस पता नहीं कुछ पॉजिटिव निकाल के ले आ रहे हैं। एंड सच बताओ ये प्रोटेस्ट तो छोड़ो, ये बड़ी अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें देखने को इसमें मिल रही हैं। आपका क्या कहना है?

0: Play Bollywood's biggest hits.
1: Budget Hector Gandhi.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: breakfast.
1: So, जैसा कि आजकल जो फॉलोअप हो रहा है यहाँ पर रेडियो पे भी, हमने अपने शोज में काफ़ी बातें करी है प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग, तो इसके ऊपर भी एक मीम आया है कि भाई लाइफ दीज डेज, वेक अप, रीड अबाउट द प्रोटेस्ट, पोस्ट अबाउट द प्रोटेस्ट, स्लीप एंड रिपीट. क्या हम बिजी हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है. अब ये सबके लिए नहीं है ऑफकोर्स, अगर आप इंडिया से आते हैं, अगर आप एक इमिग्रेंट हैं या आप इंडियन पॉलिटिक्स और न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो हाँ भाई, हर दिन सुबह उठ के हम पढ़ते हैं नया न्यूज़, फिर नई चीज़, फिर और कितने टाइम से हुआ जा रहा है. तो दैट इज़ एक्चुअली कीपिंग ऑल ऑफ अस वेरी बिजी. धीरे धीरे अभी हर इंसान सोशल मीडिया पे आके शेयर करने लगा है, कुछ ना कुछ पोस्ट करने लगा है. सबका अपना तरीका है इस मुद्दे को देखने का, कमेंट करने का. नो, नथिंग इज रॉन्ग एंड राइट, बट हाँ भाई, बहुत आजकल सब बड़े बिजी हैं इसको लेकर.

वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं, क्या हाल चाल। यहाँ पर आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट शो। मौसम, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, प्रोटेस्ट, ये सब बातें हमने कर ली है और कॉमनवेल्थ के भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ से प्रोग्राम में हम और भी नई चीज़ें जो हैं इसके बारे में बातें करेंगे। देश दुनिया में और भी क्या चल रहा है भाई, वो भी देखना ज़रूरी है। न्यूजीलैंड में क्या चल रहा है, कहाँ आप वीकेंड पे घूमने के बारे में सोच रहे हैं, अभी कैसे सोचोगे। ऑकलैंड में तो खैर मौसम की हालत काफ़ी तगड़ी ख़राब हो रखी है, लेकिन बहुत ठंड है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें एंड कीप हमिंग।

0: breakfast on Hum.
1: एक बहुत ही फनी सी न्यूज मुझे कहीं पर पढ़ने को मिली, जहां पर मतलब चीटिंग है और साथ में अलग ही तरह का जोक हो रहा है। यहां पर एक हस्बैंड ने एक फेक आईडी बनाई अपनी बीवी से चैट करने के लिए, बिकॉज उसको डाउट था कि उनकी जो वाइफ है वो किसी डेटिंग वेबसाइट पर भी हैं। तो उन्होंने भी फेक आईडी जाके बनाई और उन्होंने अपनी बीवी के साथ उनका मैच हुआ, वो बात करने लगे। और जब वो बात कर रहे थे तो जब हस्बैंड ने वाइफ को पूछा, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या जो भी ऑनलाइन मिल रही है इस सिचुएशन में, कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो उनकी वाइफ ने बोला कि उनको तो गुजरे 2 साल हो गए। जिंदा इंसान को टपका दिया इनकी वाइफ ने। अभी और क्या क्या देखने को बचा है भाई इस दुनिया में।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals, plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7, Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: Branchy Group, Tree Event New Zealand, and Aroha Autos, Sathe Mali ne prastut kare chhe, Raj Gadvi, live in Auckland.
8: Hey, hello, bhai, hello, hello.
7: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજ ગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
9: સુપર બર્થડે ડીલ્સ આર કમિંગ ટુ યુ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. વોચ ધીસ. આઈ એમ હિયર. નાઉ આઈ એમ હિયર.
10: નાઉ આઈ એમ હિયર.
9: બેક હિયર નાઉ.
10: Here I am.
9: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
11: Maddie didn't think she needed a DVS system.
12: I've got a heat pump. That should do.
11: But it didn't do it, did it, Maddie?
12: No. My windows wouldn't stop crying condensation.
11: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
14: Chill, sip, smile.
15: This is Sunday Breakfast.
16: भाई, अगर आपके माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मत बनो, एक्टिव मत रहो इंस्टाग्राम पे, ब्ला ब्ला ब्ला, आई थिंक बैलेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसको अभी इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सपोर्ट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं क्रिएट रील, स्टे एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम.

वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग. मेरा नाम है रक्षा. आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट शो. और बड़ी खबर का वक्त आ चुका है. जैसे कि बहुत बार न्यूज़ चैनल खोलते हैं हम और उसमें आ रही होती है बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, और उसके बाद बहुत ही छोटी सी खबर दे देते हैं यार. लेकिन यहाँ पर मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए जनरली बड़ी खबर है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में इन फर्दर डिटेल्स. एंड उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में और क्या हमारा न्यूजीलैंड जो है ये कर रहा है और कहाँ पहुँचा है, मेडल टैली में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी थोड़ी ही देर में. लेकिन उससे बहुत पहले यहाँ पर मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी इंसान का बर्थडे, जिनका नाम है कुसुम थापड़. कुसुम थापड़ जी जो हैं ये न्यूलैंड में रहती हैं और आज इनका जन्मदिन है. कुसुम, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. कीप शाइनिंग. मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कीप ग्रोइंग. जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, आई एम वेरी श्योर आप उसकी तरफ हार्डवर्क कर रही हो और भगवान जो है वो आपको इसमें पूरी पूरी मदद करें और आप लंबा और हेल्दी जो है ये जिए. ये मेरी और पूरे हम की टीम की कामना है आपके लिए. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन. इसी के जैसा अगर आपके घर में भी किसी का जन्मदिन है, दिन क्यों बोल रही हो यार, मैं हुआ क्या है मुझे, अच्छा आई थिंक आई नीड टू हैव सम कॉफ़ी. बट अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन है या फिर किसी की एनिवर्सरी है, कुछ भी स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना फ़ोन उठाइए और मुझे एक प्यारा सा टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं 5599 पर.

0: हम के अगले पॉडकास्ट में यहाँ पर शनील लाल जी जो हैं इनको हमने एज अ गेस्ट बुलाया एंड देर वेर अ लॉट ऑफ बहुत सारी बातें हुई अराउंड ब्रेकिंग बैरियर्स कहाँ पे. कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक्स वाई जेड चीज़ें होती हैं और हम रेडी नहीं होते हैं, हम रिजिड होते हैं उन चीज़ों को ही मानने के लिए और हम ओपन हो ही नहीं पाते हैं बिकॉज हमारी नॉलेज पूरी नहीं होती है, इज़ व्हाट आई फील. और यहाँ पर जो शनील हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग LGBTQ राइट्स की रेसिज्म रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च फॉर इक्वालिटी. सो अगर आप सुनना चाहते हैं आई हैव बीन थ्रू दिस पॉडकास्ट और मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा. आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी जो मुझे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आई, तो वो आपके साथ भी होगा. एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू गो अहेड एंड डेफिनेटली टाइप करें ड्राइव और इसे भेज दें 5599 पर.
1: इट्स द फाइनल डेज ऑफ गेम विनिंग सेविंग्स एट रिबल. स्कोर एन एपिक 20-40% ऑफ ऑल क्लोथिंग. दिस 40% ऑफ नाइकी एंड एडिडास बैग्स प्लस एट लीस्ट 20% ऑफ स्टोर वाइड. डोंट गेट लेफ्ट ऑन द साइडलाइंस. डील्स इन संडे एट रिबल Sport. See you online for T's and C's.
2: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
3: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos, Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
4: Hey, hello, bhai, hello, hello.
3: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજ ઘડવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ઘડવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
5: રાઇટ નાઉ યોર ટીમ કુડ બી વિનિંગ. સ્પ્રિન્ટિંગ, પિચિંગ, કિકિંગ, સિન્ડિંગ. And you need to know about it.
6: Join our tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
6: join our tribe!
7: Keep calm because Punjabi swag is on.

नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक. हम ब्रेकफास्ट शो में आपका स्वागत है. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपका और मेरा सफ़रनामा चलने वाला है अगले 3 घंटे, जहाँ पर हम करेंगे बहुत सारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक. इसके अलावा 104.2 FM, 87.7 AM अगर आप सिटी में हैं तो, और साथ में रोवा ऐप. गाइज, इसको डाउनलोड करना ना भूलें. रोवा हैज़ मल्टीपल फीचर्स नाउ, जहाँ पर आपको अलग अलग म्यूज़िक स्टेशंस देख सकते हो, आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो, आप हमारे बारे में भी वहाँ पे जान सकते हो. वी हैव शोज़ के डिस्क्रिप्शन है ऑल, देयर इज़ अ लॉट ऑन रोवा. और साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप रोवा के माध्यम से हमें कभी भी सुन सकते हो. देयर इज़ नो स्विच ऑफ एट रोवा. आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रह सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त.

0: meter.
1: So, टाइम आ गया है बड़ी खबर का, और सच बताऊं बहुत प्राउडली ये खबर को मैं लेकर आ रही हूँ, बट उस खबर के बाद जो हुई है, पता नहीं जो चीज़ सेकंड हुई है वो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है, तो पता नहीं मुझे ये खबर पूरी तरह से वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है, बट शायद आप जो है मेरी मदद कर सकते हो. सो फाइनली कॉकरोच जनता पार्टी एंड ब्ला ब्ला ब्ला के साथ जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारा चल रहा था इंडिया में जंतर मंतर के सामने रिगार्डिंग द नीट पेपर लीक, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है मांगा गया था. तीन शर्तें रखी गई थी और उसमें से सबसे पहली शर्त ये थी कि हमारे जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका रेजिग्नेशन जो है ये मांगा गया था, और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया. सो दैट हैज़ बीन डन एंड आई डोंट थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट आई नो ऐसा कभी हुआ है. सो कुडोज टू जेंजी, जेंजी हैज़ रियली वर्कड हार्ड यहाँ पर, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वो करके दिखाया जो बहुत टाइम से बहुत सारे लोग कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए. सो कुडोज टू जेंजी. जेंजी ये वही जनरेशन है जिसको हम काफ़ी निठल्ला और निकम्मा भी बीच बीच में इनडायरेक्टली बोल रहे थे, और आपको और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसा कोई जेंजी अगर मुझे अभी सुन रहा हो, बिग अपोलॉजीज, यू गाइस रॉक. तो एनीवेज, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये रिज़ाइन कर चुके हैं, और जाते जाते जाते जाते इन्होंने क्या बोला मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वो क्या बोल रहा है इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और उनकी जगह एक नए मिनिस्टर भी हायर किए गए हैं और वो क्या बोल रहे हैं मेरे सामने है, लेकिन चलो इस डिटेल में बाद में जाएंगे. पहले आप भी जाके थोड़ा चाय कॉफ़ी मसाला लेकर आइए, और मैं भी आपके लिए प्यारे प्यारे गाने लेकर आती रहूँगी बैक टू बैक.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving away. Battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday,
7: but the adventure everyone talks about?
6: Imagine chasing waterfalls,
7: wandering lush rice terraces,
6: catching unforgettable sunsets,
7: and relaxing at iconic beach clubs.
6: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
7: discovering incredible temples,
6: tasting world-famous street food.
7: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
8: TradeDepot.co.nz. Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.

भाई गजब की ठंड हो रही है एंड द मिनिमम टेम्परेचर फॉर येस्टरडे वॉज 3 डिग्री. क्या फील कर सकते हैं. वेल आज का भी कुछ सिमिलर हाल है और मौसम की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ शो के बीच में, इधर उधर याद दिला देती हूँ. बट यहाँ पर अगेन सर्कलिंग बैक टू धर्मेश प्रधान जी जो है, इनके रेजिग्नेशन जो है इसको रिसीव कर ली गई. आई मीन रिसीव तो करना ही था, उसमें क्या ही डिक्लाइन करना था, बिकॉज वही मांग थी सबकी. और उसके बाद मेरा आप क्वेश्चन नहीं है, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट. अभी नए एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, प्रहलाद जोशी नाम है इनका, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री उठाया है. और उन्होंने ये भी बोला है कि आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. हमें वर्क टू देयर बेस्ट एबिलिटी नहीं चाहिए हमें. भाई बहुत हमारी सिस्टम जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हैं एंड इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. आई मीन मेरे अंदर भी एक पैसिव अग्रेशन है इस नीट पेपर लीक को लेकर, बिकॉज आई वॉज समवन वॉज रिटन दिस पेपर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ एंड आई समहाउ कैन रिलेट टू दैट पेन. इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज अगर आप एक इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट या लॉ स्टूडेंट रहे हो, अगर आपने इंडिया में पढ़ाई करी हो, तो आपको पता है कितना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है एंड लोगों को अपना ईयर ड्रॉप करना पड़ता है बिकॉज जिस ईयर वो दे रहे होते हैं, अटैम्प्ट कर रहे होते, उस ईयर अच्छे रैंक नहीं आई होती है या कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप री अटैम्प्ट करते हो. आप पूरा एक साल घर में ड्रॉप आउट ईयर करके बैठ के पढ़ते हो. सो व्हेन यू डू दैट ड्रॉप आउट ईयर, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है बिकॉज यू नो देयर इज नथिंग एल्स, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग रियली बिग. और उसका एंड में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है. और जब आपका मोरल डाउन होता है, आपके पूरे खानदान का मोरल डाउन होता है बिकॉज हम इस तरह के कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हर इंसान हमारे ऊपर बड़ा काम कर रहा होता है.

ही एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है या एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है कंट्री का, और एक बीए ग्रेजुएट नहीं बन सकता है? चलो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मैं भी अभी सोच रही हूँ कि भाई मैं किस तरफ हूँ, मैं भी अभी सोच रही हूँ। आई मीन ये मेरे को भी उस क्वेश्चन है, एक साइड होनी चाहिए जो आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए, आई नो द वाइजर एंड द इंटेलिजेंट साइड इज़ टू बी ऑन द साइड जहाँ पर पढ़ा लिखा इंसान, बट वॉट एल्स क्या हो सकता है? ये पॉलिटिक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करें 5599 पर।

भाई एक चीज तो बोलनी पड़ेगी कि पास्ट एक महीने में लोगों का एंटरटेनमेंट पूरा प्रोटेस्ट था, और मेरे साथ मैं बहुत टाइम तक मैं इसको फॉलो नहीं कर रही थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इधर लास्ट एक वीक से एक डेढ़ वीक से मैंने जाके न्यूज़ एंड सब कुछ ढंग से पढ़ना शुरू किया रिगार्डिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड जब मैं एक्चुअली इस प्रोटेस्ट के एक ऐसे पार्ट पे पहुंच गई थी, लाइक एज एन समवन हु इज़ वॉचिंग अवे फ्रॉम द कंट्री, जहाँ पे मैं रिलेट कर पा रही थी, मैं इमोशंस को फील कर रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड मैं इन्जॉय कर रही थी उस प्रोटेस्ट को, बिकॉज देर वर सो मैनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर एक मूवी बनाई जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें इस प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने के जो ये जो रील्स जो ये बिल्कुल यू नो वायरल हो रहे हैं, उन लोग को ले लाकर, और मुझे लगता है एक मूवी बनानी चाहिए बॉलीवुड में। इन एनी केस बॉलीवुड वालों डायरेक्टर्स के पास स्क्रिप्ट नहीं, आई थिंक दिस कैन बी समथिंग रियली गुड, एंड इससे जो है ना यूथ को कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा, रैदर देन ऑल दोस थ्रिलर्स एंड ऑल, जिसको सीख सीख के आजकल लोग अपने आप को मतलब पूरा प्लॉट कर लेते हैं खुद ही। आपको पता है मैं किस तरफ जा रही हूँ, बट लेट्स नॉट गेट देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर मुझे आपके लिए प्रोग्राम लेकर आने के लिए, दो इट इज़ कोल्ड, दो इट इज़ फ्रीजिंग, दो बट इट्स आउटसाइड, आई एम हियर आपके साथ यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रही हूँ, और बहुत प्यारी प्यारी न्यूज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। खैर एनीवेज दिस प्रोटेस्टिंग इज़ डन एंड सॉर्टेड एंड अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट हैज़ कम आउट ऑफ इट, एंड इसके बाद हम मूव ऑन करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। न्यूजीलैंड जो है क्या नया लेकर आई है हमारे सामने, स्टे ट्यून्ड।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi. You never know. Play at your local lotto store or online today. R18.

वेल, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और आपने एक ऐसा वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर एक कोरियोग्राफी चल रही है, एक लड़का पीछे डांस कर रहा है, लड़की आगे है, एंड शी इज़ विद अ चुन्नी, और उसमें एक पिच आता है जिसमें वो लड़की फिर चुन्नी हटाती है, लड़का पीछे से उसकी चुन्नी पकड़ता है, एंड देयर इज दिस डांस जो फॉलो होता है, एंड आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस दिख जाएंगे. अब ये जो गाना है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो करण औजला को फॉलो करते हैं, यू नो व्हाट सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अगर आप पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है इसको फॉलो नहीं करते, आपको नहीं पता है, आप सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है, सो दिस इज़ अ वेरी फेमस ट्रैक फ्रॉम वन ऑफ द ग्लोबल सेंसेशन एंड अ वेरी बिग स्टार, जिनका नाम है करण औजला. ही इज़ अ वेरी फेमस, क्या बोलूँ यार, पॉप पंजाबी म्यूज़िक में बोलना चाहती हूँ, इसके सितारे हैं, और ये बहुत ही जल्दी आके ऑकलैंड में परफॉर्म करने वाले हैं. दिस परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू हैपन ऑन दी 25th of August एट दी स्पार्क अरिना. आपके पास मौका है डबल पास भी जीतने का. ऐसा करने के लिए आप टाइप करें KA और इसे भेज दें 5599 पे. टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन hum.rova.nz, साथ में livenation.co.nz. इसी से मुझे याद आया, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है करण औजला का? सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मैं भी तब तक सोचती हूँ, और हम दोनों वापस आते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और आगे बढ़ते हैं गाने के साथ.

भाई जब दुनिया सो रही थी तब कॉमनवेल्थ में हमारे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं मेडल्स जीत रहे थे. आज सुबह 6:41 पे स्विमिंग में एरिका फेयरवेदर जो हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. ये आज नहीं है यार, ये कल है. एंड इसके अलावा जोई पेडरसन ने भी ब्रॉन्ज जीता. दिस वाज इन 50 मीटर विमेंस बटरफ्लाई. ये दो ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं ये हमारी कोर्ट में ऑलरेडी फॉल कर चुके हैं. इसके अलावा आज यानी 26 जुलाई को और कौन से गेम्स हैं जो होने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ. सो 9:30 बजे रात को हमारी टाइमिंग में अगेन देयर सम स्विमिंग कॉम्पिटिशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन. इसके अलावा बास्केटबॉल जो है ये होने वाला है 10:30 PM में अगेंस्ट केमन आइलैंड्स. 10:45 PM में बॉक्सिंग है 54 kg वुमेन राउंड ऑफ 16. 11 PM पे जिमनास्टिक्स है और 11:45 PM पे लॉन बॉल्स हैं. इसके अलावा कल सुबह अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में मंडे को, तो अगेन 4 बजे बास्केटबॉल, 5 बजे जिमनास्टिक्स, 6 बजे लॉन बॉल, 6 बजे नेटबॉल, 6:45 पे बॉक्सिंग एंड 8:04 पर फ्री स्टाइल का फाइनल है, जहां पर जिस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज जीता है ये जो है ये पार्टिसिपेट करने वाली है. सो मंडे 8:04 गेम AM का जो गेम है, इट कैन गेट अस अ गोल्ड मेडल. इसके अलावा देखते हैं कि अभी मेडल टैली में क्या चल रहा है. अगेन ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑन टॉप, 23 मेडल्स इसने जीत लिए हैं जिसमें से 12 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज हैं. न्यूजीलैंड इज़ ऑन दी 7th नंबर जहाँ पर हमने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करे हैं. सो टोटल 4 मेडल यहाँ पर न्यूजीलैंड अभी तक जीत चुका है. सेकेंड नंबर पे है इंग्लैंड, 15 मेडल इंग्लैंड ने भी जीते हैं. बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो. ऑस्ट्रेलिया ने 12 गोल्ड जीते हैं, इंग्लैंड अभी 3 गोल पर बैठा है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल फ्रॉम आवर कंट्री जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यहाँ पर बिल्कुल धुरंधर बन के निकल के आ रहे हैं.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: It's the final days of game-winning savings at Rebel. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Don't get left on the sidelines. Deals end Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's. Giant deal.

0: Sunday breakfast.
1: Zaika, jo feel ho. Tickle your taste buds.
2: भाई मौके पे चौका और मौके का फ़ायदा उठाने की आदत लोगों को बहुत ज़्यादा है. अपॉर्चुनिस्टिक ज़माना है. तो भैया अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, बट शांति नहीं हुई एस्ट्रोलॉजर्स को जो फिर सामने आने शुरू हो गए और उन्होंने बोला शुरू किया कि भाई हमने तो ये बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था, हमने साल के बिगिनिंग में प्रिडिक्ट किया था ब्ला ब्ला ब्ला कि ऐसा एक प्रोटेस्ट होगा. उसके बाद जब ये चल रहा था प्रोटेस्ट तब उन्होंने ये नहीं बोला इसमें कुछ चेंज होगा. और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ चुका है तो फिर अभी मैं देख रही थी, आई वाज लुकिंग इन टू कुछ वीडियोस मैंने देखा जहाँ पर यही पंडित लोग जो हैं वापस से बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स ने कि यहाँ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. तो भाई अपॉर्चुनिस्टिक ज़माना जो है ना, मतलब हर चीज़ को अपनी तरफ मोड़ लेना ये कला होती है मतलब. और ऐसा अभी एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, उनके प्रेडिक्शन के वजह से ये जो इतना बड़ा आंदोलन है ये हुआ और इतने बड़े चेंजेस जो ये हुए. इसके अलावा अब सुनने में मिल रहा है कि भाई मर्क्यूरी तो रेट्रोग्रेड हुआ था, अगर आपको याद हो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, अभी सैटर्न भी रेट्रो जाने वाला या जा चुका है 6 महीने के लिए. मेरा सवाल है अगर यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है या जानता है कितने टाइम ये कितनी बार ये प्लैनेट्स रेट्रो जाते हैं और कि मतलब सीधा कब चलते हैं. मैं जब भी खोल रही हूँ इंटरनेट तब रेट्रो रेट्रो रेट्रो क्यों सीधा क्यों नहीं, कोई इसका जवाब दे सकता है हमें 5599 पर.

सो अगर आप इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे हो, आप इंडिया से नहीं हो, आपका रूट्स इंडिया से नहीं है, आपको पता है, बट आपने कहीं पर भी सुना है कि यहाँ एक जेंजी ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी. अब भाई इतना धुरंधर वाला काम करने के बाद भी इनका नाम में कुछ बदलाव होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या कुछ प्रपोजल डालना चाहिए जहाँ पे ये अपने नाम को थोड़ा मतलब एकदम रॉक सॉलिड टाइप्स, अभी भी मतलब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट कॉकरोच जनता पार्टी से तो कोई भी दूसरा नाम अच्छा नाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो अब जेन जी डिसाइड करेगी. इफ़ आई हैव समवन फ्रॉम दिस जनरेशन लिसनिंग टू मी, ये अगर आप सुन रहे हो, आपके घर में आपके बच्चे जेन जी हैं, उनसे पूछिए अगर इस नाम को हमें कुछ अच्छा मज़ेदार सॉलिड नाम देना हो तो नया नाम क्या डाल सकते हैं यार, बिकॉज मुझे लगता है ये लोग बहुत डिजर्व करते हैं. अभी कॉकरोच जनता पार्टी से इनका नाम बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब एकदम सुप्रीम मैक्स प्रो मैक्स कुछ नया होना चाहिए. आपका क्या कहना है?

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
2: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Brewing good vibes, Sunday style.
4: Sunday breakfast on Hum.
3: Zaika, to feel hope. Tickle your taste buds.
5: टेस्ट बट से मुझे याद आया कि यार अभी रिसेंटली मैंने ना एक साउथ इंडियन बहुत ही मज़ेदार सा एक स्नैक खाया, पुन्नू गुल्लू। भैया लुक को यार अभी थोड़ा मैं गूगल करूं, बट जब तक मैं कर रही हूं, सो बेसिकली ये कुछ, हाँ पुन्नू गुल्लू। अभी जो लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं वो तो जानते हैं कितना औसम अमेजिंग है ये, बट भाई आई जस्ट लव्ड इट। इट्स लाइक बॉल्स, वड़ा बॉल फ्राइड होता है बेसिकली, और थोड़ा क्रिस्पी इसकी कोटिंग होती है, और इसके साथ दो या तीन चटनी आ सकती है, पीनट चटनी हो सकती है एंड देयर इज दिस अदर रेड चटनी जो थोड़ी स्पाइसी होती है, और भाई मज़ा आ गया कसम से। अभी ना मैंने डाल दिया है गूगल पे और इमेजेस पे चली गई और मेरा पूरा स्क्रीन इतने पुन्नू गुल्लू से भर गया है कि मैं बता नहीं सकती। लाइक आई मीन दिस इज अमेजिंग। इट्स लाइक अ क्रिस्पी बोंडा बोल सकते हैं, बट आई जस्ट लव्ड इट। मैंने पहले कभी नहीं खाया, मैंने इधर फर्स्ट टाइम ही खाया एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। तो अगर आप जो हैं, और आई थिंक इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है क्योंकि मैं पूछ के आई थी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, मैं खुद भी अभी गूगल करके, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और नहीं तो अगर आप भी कुछ अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक अनहेल्दी नॉट द हेल्दी वन, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। मे बी सम डिफरेंट, मैं सोच रही हूँ इसको एयर फ्रायर में बनाए तो कैसा लगेगा, बट भाई रिवन नहीं करने का। अगर हेल्दी खाना है तो इसको मत खाओ, अनहेल्दी खाना है तो भाई इसमें कोई भी खराबी नहीं।
3: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
1: चिल सिप स्माइल
3: दिस इज संडे ब्रेकफास्ट
4: स्वागत है आपका वेलकम बैक हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यहाँ पे देखते हैं हमारी कम्युनिटी में क्या नया जो है ये चल रहा है तो श्रीराम मंदिर जो है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ आपके लिए लेकर आने वाले हैं ऑन सैटरडे एंड संडे नेक्स्ट वीकेंड ऑन द 1st and 2nd of August सैटरडे को पूजा होगी 7 बजे फिर 8:15 बजे आरती होगी फिर 8:45 पे रामायण पाठ की शुरुआत होगी संडे सुबह 10 बजे रामायण पाठ की समाप्ति होगी एंड 10:30 बजे हवन अथवा आरती होगी महाप्रसाद जो है ये सर्व किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम रजिस्टर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 09836464647 पर

वेल, मैं बात करने जा रही हूँ गरबा के बारे में, लेकिन उसी से मुझे याद आया कि आज जो सबसे पहला वीडियो मैंने उठ के देखा, मैं ऐसे ही उठी और मैंने रैंडम इंस्टाग्राम खोला, वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कितना प्यारा सा डांस कर रही थी एट अ गरबा इवेंट. आई मीन शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल एंड द ग्रेस इन दैट गरबा. और जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो और जब आप वो कर रहे हो तो ना, आपके वो अच्छा ही होता है और वो अलग ही जॉय नज़र आता है. वैसा ही कुछ होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही धमाल मचाने वाली शाम और परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं राज गद्वी, जो कि यहाँ पर गरबा नाइट लेकर आ रहे हैं एट महात्मा गांधी सेंटर कमिंग सैटरडे ऑन द 1st of August. टिकट्स आर सेलिंग वेरी फास्ट. events.tickets.co.nz पे आप टिकट खरीद सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट करें स्वप्निल शाह को 0224394736. इसके अलावा आप डबल पास भी जीत सकते हैं. टाइप करें RG फॉलोड बाय आपका नाम और इसे भेज दें 5599 पर.

0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
1: Brewing good vibes, Sunday style.
2: Sunday breakfast on Hum.
3: Flashback में अगर जाए तो actually flashback में अगर जाए तो बोले तो I don't know क्या हो रहा है यार. मैंने last night I met some of my friends who are from Mumbai और इतना बोले तो हो गया. उसके अच्छे में मैं यही बोले जा रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि बस आप अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हो या किसी से मिलते हो आप उस

का लिंगो कैच कर लेते हो थोड़े टाइम के लिए. हाँ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. इनफैक्ट मेरे साथ एक चीज़ और ही बहुत ज़्यादा होती है कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू समवन और आई एम वर्किंग विद समवन, तो मैं ना नाम बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं नाम लेके बात करती रहूँगी और फिर मैं उसी नाम से पूरी दुनिया को बुलाना शुरू कर दूँगी. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं किसी के साथ काम करूँ उसका नाम प्रीति है, तो फिर पूरी दुनिया में सबको मैं प्रीति ही बुलाने लगूँगी. तो इसीलिए ग्रोइंग अप, जब हम छुप छुपा के कॉलेज में कभी डेटिंग किया करते थे और किसी को डेट कर रहे होते थे, तो घर में भी कहीं ना कहीं से ये सीक्रेट पता लग जाती थी बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड आदत. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ना वो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी तो काफ़ी इनोसेंट थी, उसको वो कभी कभी सुनती ही नहीं थी मेरी बात, को पता ही नहीं है कि मैंने क्या बोला है. यू नो लाइक हाउ अब हमारी प्यारी मम्मियाँ हुआ करती है. बट मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं जिसके साथ भी काम कर रही हूँ या जिसके साथ हैंग आउट कर रही हूँ, बस उसके बाद वही नाम मैं सबको बुलाना शुरू कर देती हूँ. मेरे बस बिल्कुल वो कहते हैं ना, ज़बान पे चढ़ जाती है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?

भाई फ्लैशबैक में मैं जाना चाहती हूँ, अगेन गोइंग बैक टू कहुना प्यारे मूवी का शूट, जिसमें देवस क्यों चलती है पवन एंड वो स्नोई माउंटेन्स एंड ऑल जो दिखाए गए उसमें, अभी भाई उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। प्लीज़ वापस से बुलाओ मिशा और ऋतिक को और बोलो उनको यहाँ पर आके एक और मूवी बनाएं, एक और शूट करें और इस बार हमसे मिलके भी जाएं यार। लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल डाउन साउथ। आई थिंक एवरी सेकेंड पर्सन इन माई इंस्टाग्राम इज़ पोस्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम द साउथ आइलैंड कि वो घूम रहे हैं और स्नो है और इतना प्यारा हो रखा है ना कि ऐसा लगता है बस वहाँ जाके ना, मतलब वहीं पे जाके रिटायर कर जाओ, बस एकदम सुकून वाली ज़िंदगी। क्या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो विंटर में साउथ आइलैंड जाना पसंद करता है या समर में जाना पसंद करता है? आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले, ओनली वन ऑप्शन कि मैं कब जाना चाहती हूँ, आई थिंक आई वुड लाइक टू सी साउथ आइलैंड इन विंटर्स, बट आई हैव सीन इट इन बोथ द वेदर्स एंड भाई क्या है भैया, जन्नत है। आपका क्या कहना है? अपने बारे में मुझे ज़रूर बताएं 5599 पर।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Sunday only at Briscoe's. Dive in for high-scoring 60% off deals, plus a huge 30 to 60% off store-wide. Hurry in and splash out. All stores open till 7. Sunday only at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
7: Thank you.
8: It's all I can think about.
7: What does it sound like?
8: Yeah, I'd rather not.
7: Go on, why don't you have a crack?
8: Okay, got a plumbing problem.
7: Oh, I need a bit more than that.
8: They've got your back.
7: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
8: Oh, okay.
9: There's no better plumber to give it a crack.
7: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
8: No, I want a plumber.
10: Advertise with
11: MediaWorks.
10: New Zealand listens to us.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए. मेरी और आपकी जो मुलाकात है वो होगी बहुत ही जल्द. तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का और भी ज्यादा ध्यान रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप हमिंग अलोंग.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी